गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक

0: अपना फर्ज अदा कर गया, असी अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नूं लैके चलांगे, तेरे वांगू यंड करावांगे।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।

0: नेक्स्ट लेवल।
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

उसमें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता, क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।

0: मैं तेरी हर गल ते यारा अमीन की तस अमीन की तस।
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: एक अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पेंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया फेरा वे पंडता खानी कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

छड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: तू फिर आ गया। तैनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल हाथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकेट विच ईड़े ने मौलके नू वांगू परेज।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे